उस हरी ने बाकी इंसानां नूं भी पैदा कीता। तुहाडे विच भी हरी, उन्हां विच भी हरी, फिर क्यों जुलम करदे? ये उपदेश सुनिया उन आदमखोरां ने नामदेव दे चरणां ते।

पत्र लिख के क्या सेठ जी ए लो तुलसी का पत्ता कुत्ते राम लिखे है। तकड़ी एक पासे तुलसी का पत्ता रख दो जिदे ते राम लिखे है, ते तकड़ी दे दूसरे पासे सोना पा दो। जिन्ना सोना इस पत्ते दे बराबर होवेगा

पर मैनू ते राम दे बराबर ही सोना चाहिए, जे दे सकदे हो तां जरूर दे। सेठ हंकार विच हसिया, तकड़ी मंगाई, तकड़ी दे एक पासे वो पत्ता पिया है तुलसी दा जिहदे उत्ते राम लिखे, ते सेठ ने हसदिया होया।

अगर कोई बनारस जाके तप करे उल्टा लटके तीर्थां ते जाके मरे अग्नि विच अपना शरीर

भाज के उस जगह आए अर्जुन तुहार के और सामने पहाड़ से शिवजी भगवान छोटे दे रूप में जिसनों हिंदी में सांड कहते हैं रूप में भजे आए तो वह जड़ा पहाड़ से।

देव बदलावन दे। मैं ते करमैया दा नाम जपदा ते ओदे बदले सारे देवी देवते छड़ दिते ने। इस करके ऐ भाई जिस अकाल पुरख ने

0: मन टिक जावे। छे बचन गुरु नानक साहब जी ने इन्हां दी झोली च पाए, उन्हां चों तीन बचना ते विचार सतगुरु ने पिछले दो दीवाना विच सेवा लै लई है। खास करके इस वेले जो समा जा रहा है, काफी ऐसी गिनती के प्रेमी बैठे होंगे जिन्हां नूं इस बचन का भी ज्ञान लोड़ है। गुरु नानक बाबा जी ने भाई फिरने ते रोग नूं चौथा बचन झोली च पाया है। किसे तो मंगण तो लज्जा करनी ते दे के खुश होना। सारे चाती पायो, किसे तो मंगण च लज्जा करनी दे के खुश होना। मैं कहना अज इस बचन की बड़ी लोड़ है। टाइम जिहड़ा जा रहा है, हर बंदा अपनी चादर तो वध पैर पसार है। कार की समर्था नहीं तां वी कहिंदा बैल वा किश्तां ते मिलदी पई। फलाने की लोड़ नहीं तां वी कहिंदा लै लो। दूजे नाल बराबर की गल नहीं बनती। फिर हौली हौली हाथ टाइट होंदा जांदा है। परेशानी बन गई, बाबे ने चौथा बचन चोली च पाया कि किसे तो भी मंगण तो पहले लज्जा रख, गुरेज कर, शर्म रख। बाकी एक ध्यान देना, मंगना दो तरह, एक गुरु लई मंगना है, एक अपने घर लई मंगना है। लग गया कुछ सतना। जेड़ा गुरु लई मंगना है ना, उसके धक्के नाल मंगना मनाई, प्रेरणा दे के वो मनाई नहीं मंगना। क्योंकि जिवें बाबा सेवा सिंह जी की तुम्हें साफी सुनी है, उगराई लै रहे थे गुरु के महल दी, रक्षियां वाले चले गए, चौंक रक्षे खड़े थे। उन्होंने कहने लिया भी तुम भी सेवा कर, सेवा दे गुरु के महल दी। एक रक्षे वाले ने दो रुपये दिते, एक ने रुपया, एक ने थैली दी। सेवादार ने कहा बाबा जी कोई दुकानदार 500 दिंदा पिया, कोई 1000 दिंदा पिया, तुसी रखियां ने वड़ गए। चंगा लगता जिन्हें तेली रखी तली पेगा को सतनाम। बाबा सेवा सिंह जी का वचन सी, कहंदे आ रक्षा वाला तेली नहीं देगा, 2 रुपये नहीं कोई देगा, ते गुरु के महल की सेवा नहीं रुक जानी। असि इन्हों को इंज लैन लग पे हां, साडे मन च तरस आ गया इन्हां दी वी गुरु तेग बहादुर गुरु के महल दे दर नाल सांझ पै जाए। एक सेवादार नेड़े सी, उन्हें भी कहता कि महाराज ढेली देने वाले की भी सांझ पै जाएगी। महापुरुष कहते हां, उदो 44 दिन सी जदों का बचा ने, कहते हां जेडी ढेली देने की भी श्रद्धा तो 2 रुपया एदिया भी गुरु के महल लग जानिया ने, एदी भी सांझ पै गई। सब सतनाम। हुण ए है गुरु नहीं मंगना, प्रेरणा नाल धक्के नाल नहीं। जे कोई धक्के नाल गुरु नहीं मंगता तो मसंदा की गल बन जाती है। जेडे मसंद धक्के नाल सिखा को दुसंद लेंदे धक्के नाल, प्रेरणा नाल गुरु लई मंगना ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਨੇ।
1: ਇੱਕ ਮੰਗਣਾ ਆਪਣੇ ਨੇ
0: ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੰਗਣਾ ਇਹਦੇ ਬੋਝੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬੋਝੇ। ਗੱਲ ਬਰੀਕ ਹੈ,
1: ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਬਸ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੰਗਣਾ ਇਹਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਮੰਗ ਹੱਕ ਸਤਨਾਮ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣੇ ਤੈਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ। ਪਰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੌ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਲੱਜਾ
0: ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ।
1: ਇੱਕ ਪੰਜ ਬਚਨ ਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਰੱਖਦੇ ਆ

मैं ते अवगुणा दा भरिया होया, मेरे अंदर एक भी गुण नहीं है, क्योंकि चंगा ते मैं गुण नाल होना है ना। पर जे मेरे अंदर एक भी गुण ना होवे ते मैं चंगा किवें हो सकदा।

कंचन नारी में जियो नौबत है, वो मीठा माया। हे मेरे मालिक, साडे अंदर वो गुण क्यों नहीं हन, अवगुण क्यों भरे हुए ने? क्योंकि जरा साडा मन है ना, कंचन कहिंदे ने सोना ते नारी कहिंदे ने इस्त्री, बस इन्हां विषय विकारां विच पै के मोह दे जंजाल विच फस के माया दे मिठे रस चख के, हे परमात्मा असीं तेनूं भुलाया होया।

चंगे गुणवंता हर हर दयाल। हे मेरे मालिक गुणवंता, तू साडे ते दया कर, कर कृपा बख्श, तुसी करो कृपा साडे अवगुण बख्श के ते सानू अपनी चरणा नाल ला लो। कर कृपा बख्श अवगुण सब में, मेरे अवगुण बख्श दे, मैं अवगुण हारा तेरे दर ते आ डिगा हां। अगे साहब।

मना मैं रूप, मेरा सेवा रूपी रूप चंगा नहीं, ना बंके नैना मेरे नैन भी सोने नहीं हन, ना कुल टंग ना कुल चंगी है, ना परमात्मा मेरे कुल कोई टंग है, ना मीठे बैण ना ही मेरे बोल मिठे ने, जेड़े मैं बोल बोल के तेनू अपने वस कर ला। मेरे कुल चंगा गुण कोई भी नहीं।

ए माधो माया दे मालिक, माया दे साई, माया दे पति, हम ऐसे तू ऐसे। सतसंग तो ध्यान देन हुण इत्थे परमात्मा किहो जे है ते असी किहो जे आ, सतगुर कह रहे ने हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन।

0: हम पापी तुम पाप खंडो।
1: हे परमात्मा असी चंगे क्यों नहीं, क्योंकि असी पाप करने वाले हां, तुसी पापां दा खंडन नाश करने वाले, किवें चंगे हो गए। हे परमात्मा चंगा ते फिर तू ही होया ना, निको ठाकर देसा सब नालों चंगा तू, जेड़ा साडे अवगणा दा भी नाश करी जांदा। हम ऐसे तू ऐसा, आओगे ख्याल करिए, क्योंकि बाणी बड़ी अथाह है, बाणी बड़ी अथाह है। कोशिश करिए इस मान सरोवर ते आइए ते गुरु ग्रंथ दे अखर एक एक चुगन दी कोशिश करिया करिए। इस एक एक शब्द दी विचार इतनी कीमती है, गुरु बख्शिश करे रहमत करे जे किते मन च वस जाए जीवन बदल जाता है, जीवन पलट जाता है। हुण सतगुर ख्याल

हम अवगुण तुम उपकारी। मैं अवगुण हारा ते आप उपकारी हो। मैं अवगुण करी जाना आप मेरे अवगुणा दा नाश करी जांदे। ख्याल करना परमात्मा अवगुण बख्शदे हन। एक जगह भगत कबीर जी ने बड़े फखर नाल गल आखी है, कहिंदे ने हे परमात्मा तो किन्ना दयालु है।

गोविंद हम ऐसे अपराधी, ऐसे अपराधी। भाई साहब भाई गुरदास जी कहंदे ने कि हे मेरे मालिक असी किहो जिहे अपराधी आ, साडे अंदर किन्ने कु औगण ने। भाई साहब जी ने इस पौड़ी अंदर 22 औगणा दा जिक्र कीता है, कहंदे ने 22 औगण सब तो वड्डे मेरे विच ने। साध संगत ध्यान करना,

नाम तो बिना भाई तेरा क्यों छुटकारा हो सकता, ते नाम मिलता कितों है आख्या जपन वालियां की संगत विच तेनू नाम मिठा लगन लग जाएगी। जपन वालियां की संगत विच नाम तेरा आधार हो जाएगा, साच नाम आधार। जिन्हां नाम का आधार हो गया फिर उदियां सारियां ही भुखां दूर हो जांदियां हन। उचारण करो श्री वाहिगुरु। इस हजूर बख्शिश करते हैं कि यह गुरु की शरण विचों मिल सकता। जैसे मंदिर में बल हरना ठहरे, नाम बिना कैसे पार उतरे, कुंभ बिना जल नाहे टिकावे। कुंभ कहिंदियां घड़े नूं, आख्या जिस तरह जल कुंभ तो बिना टिक नहीं सकता, आ बर्तन तो बिना जल किवें टिकाओगे भाई। वो जल बर्तन तो बिना बिखर जांदा है, जाया हो जांदा है। ते जे तैनू ही सतसंग नहीं प्राप्त होया, गुरु की शरण नहीं प्राप्त हुई, तो तेरा मनुष्या जन्म भी इसे तरह रुड़ जाए। कि कुंभे बद्धा जल रहे, जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्धा मन रहे, गुर बिन ज्ञान ना होए। गुरु की शरण विचों तैनू लोक परलोक दे सुख मिलनगे।

जैसे सर्प दी आरजा है किसे काम नहीं, और बड़ी वड्डी आरजा होंदी है सप दी। अजगर सप्पां दी सैकड़े हजारां वर्ष आरजा होंदी है। आख्या साकत दी भी इसे तरह ही आरजा, जिस तरह ओ किसे काम नहीं आउंदे, बिना नाम तो मनुख भी किसे काम नहीं।

बिन सिमरन भय कूकर काम साकत बेसुआ पूत न नाम बिना सिमरन दे आख्या मनुख इस तरह है जिस तरह वेशिया दा पुत्र है ते अपने प्यो दा नां नहीं जानदा उनू कोई पुछ लवे भाई तेरे पिता दा की नाम है ता की दसेगा आख्या बिना नाम तो मनुख भी ऐसा ही है बिन सिमरन

आखिर निर्मल सोए, जब लग जाने मुझते कछ होए, तब इसको सुखना ही कोए। जावे जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्भ जोन में फिरता। जब तारे को बैरी मीत, तब लग नेचर ना ही चीत। जब लग मोह मगन संग माए, तब लग धर्म राय देश जाए। प्रभ के पाते बंधन टूटे, गुर प्रसाद नानक हो छूटे। सहस कटे लख को उठतावे, तृप्त न आवे माया पाछे पावे। अनेक भोग भिख्या के करे, न तृप्तावे खप खप मरे। बिना संतोष नहीं को राजे, सुपन मनोरथ मिलते सब काजे। नाम रंग सर्व सुख होए, बड़ पागी किसे प्राप्त होए। कर्ण करावन आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप। कर्ण करावन करने हार, इसके हाथ तहा विचार। जैसी दृष्ट करे तैसा होए, आपे आप आप पर सोए। जो किच कीनो सो अपने रंग, सबते दूर सब कै संग। बूझे देखे करे विवेक, आपे एक आपे अनेक। मरे न बिन से आवे न जाए, नानक सद ही रह समाए। आप उपदेश है समझे आप, आपे रचिया सब कै साथ। आप कीनो आपन विस्तार, सब कुछ उसका ओ करने हार। उसते पिन कहो किच होए, थान थनंतर एक है सोए। अपने चलत आप करने हार, कौतक करे रंग आपार। मन में आप मन अपने माहे, नानक कीमत कहन न जाए। सत सत सत प्रभु स्वामी, गुर प्रसाद किने वख्यानी। सच सच सच सब कीना, कोट मदे किने बिल चीना। पला पला पला तेरा रूप, अति सुंदर अपारे अनूप। निर्मल निर्मल निर्मल तेरी वाणी।

पाया जाए। हर हर नाम, हर हर नेम ऑफ गॉड नाम निदान है, इन दैट इज द ब्लिस। गुरुमुख पाया जाए, द गुरुमुख इज गिवन, द ब्लेसिंग्स आर शावर्ड अपॉन द गुरुमुख। वी हैव अ ब्यूटिफुल लाइफ टू हैव द गुरु एज अ गुरुमुख। The blessings of Vaheguru are just showered upon us. That's a blessing. Har har naam nidaan hai, gurumukh paya jaye.

पर वेखिया देवी झाड़ू दे रही आके चरणा ते टह पिया कहिंदा माता तेरे दर्शन भी होए ते झाड़ू देंदी दे लिया झाड़ू मैनू दे तू सत्तावान है तू शक्ति वाली है महामाया है ये तू की कर रही है तू झाड़ू दे रही है और वो पता है की कहती है वो कहती मैं झाड़ू दे रही हूं इतने गुरु नानक ने आके बैठना इस जगह से गुरु नानक ने आके चौंकड़ा मारना है मेरे भगता मैं उदे वास्ते झाड़ू दे रही हूं उदे वास्ते थां शुद्ध कर रही हूं कहिंदा माता वो कौन है धरती ते कोई ऐसा भी है जिदे वास्ते तेनू झाड़ू देण दी लोड़ हो कहिंदी ये हां है मैथों वड्डा है कहिंदा तैथों किवें वड्डा हो सकदा ईश्वर तो बाद तेरी शक्ति है महामाया तेरी बड़ी वड्डी ताकत है तेरे विचों ही मालक ने सारा कुछ पैदा किया है कहिंदी नहीं वह मैथों वड्डा इस करके कि जेड़े मेरे नाल जुड़ते रहे ना उन्हां नूं मैं पदार्थ दे सकनी हां मुक्ति मैं नहीं दे सकनी गुरु नानक नाल जिहड़ा जुड़ जांदा है वह उन्हूं नाम दिंदा है भगती दिंदा है उच्चा इन्ना उठा दिंदा है कि कई मुक्तियां उहदे मगर मगर लगियां फिरन मनुख दे मगर मगर चार मुक्त चारे सिद्ध मिलके दूल्हा प्रभ की शरण परयो मुक्त पयो चौहू जुग जान्यो जस कीर्त माथे छत्र धरयो राजा राम जपत को ना करयो ओ नाम जपण ला दिंदा है इस करके मैथों वड्डा है जेड़ा नाम नाल जोड़दा है मेरे कोलों लोक संसारी मंगा मंगदे ने मैं देनी हां गुरु नानक नाम नाल जोड़दा है ध्यान देना कुछ धर्मां वाले अखौती धर्मां वाले ऐसा भी करदे ने वो कहिंदे ने पाप करी जाओ साडे कोल आ जाओ आपे बख्शा लवांगे साडा इष्ट आपे तुहाडे पाप अपने मोढ़ियां ते लै के तुहानू बख्शा लवेगा ते फिर बंदा तां कोई ना बणिया पाप करी जावे उहदे बख्शाउण वाला कोई बैठा जिम्मेवार बन के गल ठीक है गुरु नानक जिम्मेवारी नहीं लैंदे वो कहिंदे ने मैं तां तैनू इन्ने जोगा कर देना चाहुंदा भी तूं आप भी बख्शिया जावे तेरे नाल होर भी कई बख्शे जाण हालांकि हजरत ईसा मसीह का एक वचन है उदा सेंट एंड्रयू ने बड़ा सुना उलथा किया कहिंदा लोग गलत समझते ने इसका वह कहिंदा मेरे मगर वह आवे जो मेरे मगर चल सकता ध्यान देना बड़ी खास गल कहिंदा मेरे मगर वह आवे जा रहे सन दुनिया बड़ी मगर तुरी जा रही थी ताड़ दी ताड़ रुक गए कहन लगे मेरे मगर सिर्फ वह आवे जो मेरे मगर चल सकता हुणे दा अर्थ लैण वाला कलेगा वह कहणगे भी वह बड़े तेज तुरदे होणगे दौड़दे होणगे या पता नहीं वह अपने खोते ते चढ़ के बड़ी तेजी नाल जा रहे होणगे ते उहनां दे मगर जिहड़े तेज नहीं तुर सकदे हो रह गए ऐसी गल नहीं उहनां दा कहण दा मतलब है जिहड़ा मेरी सिक्ख्या ते नहीं तुर सकदा रुक जाओ ना आओ मेरे मगर जिहड़ा मेरे मगर लग के मेरा अनुसारी होके नहीं तुर सकदा ना हमेशा महापुरश ही कहिंदे आए मगरलिया ने गल्लां बना रही कि तुहाडे पाप वो अपने सिर ते लै के तुहानू बख्शा देणगे तुसीं मौजां करो खाई पी चलो गुरु नानक ऐसा बंदे नूं नहीं रहण दिंदे गुरु नानक तां मनुख नूं सवार के साज के शुद्ध कर दिंदे ने इन्ना पवित्र कर दिंदे ने नाम नाल जोड़ के कि देवियां भी उन्हां वास्ते झाड़ू देण उन्हां मनुखां दा देवतियां विच भी सत्कार हो इसे करके गुरसिख की निगाह बहुत उच्ची है जांका कहया दरगह चले तो किस को नजर ले आवे तले जिहड़ी दरगाह च सुनी जांदी होवे ओ किसे नूं अख थले कहनू लिआउंदा साहिब कलगीधर पातशाह दा सवैया रोज पढ़दे पाए कहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने मैं किसे नूं अख थले लिआउंदा ही नहीं ए निक्कियां मोटियां ताकतां जो ओहदी रसाज चलण वालियां ने मैं ओहदी मालक दी ओट तकण तो बाद ए छोटियां मोटियां ताकतां वल क्यों तक्कां क्योंकि ताकतां जिहड़ियां शक्तियां जिहड़ियां रिद्धियां सिद्धियां वालियां ताकतां ने ए पदार्थ तां दे सकदियां ने वाहिगुरू नाल सिद्धा जोड़न वास्ते तां कोई गुरु नानक ही चाहिदा वाहिगुरू अकाल पुरख नाल सिद्धी सांझ पैदा करन दी बाणी विच नित प्रेरणा लई आपां इत्थे वी महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे ने एक टेक गोबिंद की एक वाहिगुरू दा आसरा त्यागी अन आस होर किसे दा आसरा नहीं सब उपर समर्थ प्रभ सारिया तो वड्डी समर्था वाला सारिया तो उच्चा वाहिगुरु है पूर्ण गुणतास पूर्ण गुणा वाला जन का नाम आधार है सेवका ने नाम नू आसरा बनाया प्रभ शरणी पाहे प्रभु दी शरण पैंदे
परमेश्वर का आसरा संतन मन माहे इन्हनु भरोसा है आप रखे आप देव सी आपे प्रतपारे दीन दयाल कृपा निधे सास सास संभारे इन्हनु ए भी मंजूर है करनहार जो कर रहे आसाई वड्याई गुरपुरे उपदेशिया सुख खसम रजाई मालक दी रजा विच गुरुपुरे ने उपदेश दिता है तेन बड़ा सुख मिलेगा पूरे गुरु गुरु नानक का उपदेश है तू निरंकार की रजा च रहो बड़ा सुखी रहेगा फिर इन्हें की पाया चिंत अंदेशा गणत तज जन हुक्म पछाता न बिनसे न छोड़ जाए नानक रंग राता ए ऐसे रंग च रता होया गुरमुख इनू भरोसा है मालिक मेनू छड़ नहीं जाएगा ओदी कृपा च मैं सदा सुखी वसांगा सिमरत स्वामी किल लिख नासे किसनू याद करन नाल पाप धोते जांदे ने सुख सहज आनंद निवासे सुख सहज ते आनंद दा वासा हुंदा है राम जना को राम भरोसा राम जन रब दे बंदे तां ओदा आसरा तकदे नाम जपत सब मिटियो अंदेशा नाम जपदियां सारे विश्व से सारे शंके सारे अंदेशे मिट गए साध संग कछ पाओ ना प्रांति सत्संगियां च मिल के निरंकार ना सांझ पाउण वाले नूं ना कोई डर है ना कोई भरम है गुण गोपाल गाईयां है दिन राती वाहिगुरु दे गुण गाउंदे ने दिन रात कर कृपा प्रभ बंधन छोट चरण कमल की दीनी ओट कहो नानक मन पई प्रतीत जिन्हां दे मन च विश्वास आ गया यकीन आ गया निर्मल जस पीवे जन नीत वाहिगुरु दे निर्मल जस दा अमृत दिन रात पींदे ने उन्हां नूं किसी थां तों कोई खतरा नहीं कोई डर नहीं किसी होर दे आसरे की लोड़ नहीं भाई पैड़ा जी नूं साहिब गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह ने बुलाया वह पंडित कथा करता सी ना पोथी मुकण ते आ गई साहब कहन लगे संगत दा रस बनिया होया पंडित जी पोथी मुकण लगी है तुहाडी कथा जे चलदी रहे कहन लगा जी दूजी पोथी दा बनारस है कहन लगे लै आओ कहन लगे मैं गया ते कथा दा लड़ी दा काम जो है टुट जाएगा काके नूं भेजदे ने साहब कहन लगे जरूर भेजदे कदों भेजोगे जी मुहूर्त कढ के दसांगा मुहूर्त कढ़िया दिन मथ लिया घड़ी पैर मथ ले आ गया महाराज फलाने दिन काका इन्ने पैर इन्ने घड़ी इन्ने पलते चलेगा साहब कहन लगे ठीक है किसी चीज की लोड़ होवे दस देनी कहन लगा जी कई चिर बाद काका घर चलिया कोई थोड़ी जी माया साहब कहन लगे भंडारी नूं कहन लगे जिन्नी माया पंडित जी कहिंदे ने दे दिओ फिर खलोते ने साहब कहन लगे पंडित जी हुण दसो कहन लगे जी काके वास्ते कोई सवारी तां चाहीदी है साहब कहन लगे वधिया घोड़ा सोहना घोड़ा काके दी सवारी वास्ते दे दिओ फेर खलोते ने साहब कहन लगे पंडित जी होर दसो कि महाराज ओ माया लैके काका कला जाएगा डर लगेगा सौ खतरे ने जंगल वेले रस्ता लंबा है किथे अमृतसर तो चल के बनारस पहुंचना है साहब कहन लगे चार पांच अंग रक्षक भी दे दियो साथी सहाय भी दे दियो शस्त्रधारी बंदे नाल जाणगे फेर खलोता है कहन लगे पंडित जी हुण दसो कहन लगे जी ओ ब्राह्मण पुत्र है राज खाए पीएगा की साहब कहन लगे राशन भी दे दियो अन्न पानी सारा कुछ नाल दियो ते नाल पकाउण वास्ते रसोईया भी दे दियो गड्डा समान दा लदिया गया एक घोड़ा ओहदे वास्ते चार पांच घोड़िया वाले नाल ओहदे अंग रक्षक माया दियां थैलियां किन्ना सारा अनाज ए सारा कुछ लैके तैयारी कर ली गई नियत दिन ते जिस वेले सरोवर दे एक पासे जंगलां दे विच खुली थां दे विच उन्हां रुखां दे विचकार पंडित जी ने हवन तैयार किया होम हो रहा है देवियां देवत्यां दी आराधना हो रही वो परछावां ढलदा वेख रहे ने सूरज उठदा वेख रहे ने अचानक कहन लगे काका हुण ओ घड़ी ओ मुहूर्त आ गई है हुण तू परिक्रमा करके पूर्ण आहुति पा के तू घोड़े ते सवार हो लड़के ने बाप दी आशीर्वाद लई हवन वाली थां दी परिक्रमा कीती सारिया ने वेद मंत्रा दे उचारण दे नाल पूर्ण आहुति पाई यज्ञ संपूर्ण होया लड़के ने बाप दी आशीर्वाद लैके घोड़े ते पैर रखिया पलाकी मार के चढ़ गया बाप ने खड़े होके असीस दित्ती घोड़ा तुरिया तुरिया ते अगों खोता हीक पिया उन्हें घोड़े दियां वागां खिंच लईयां रुक गया लड़के ने घोड़ा रोकिया बाप ने कहता उतरिया थले वापस उतर आया रात नूं फिर कथा च बैठा मुंडा नाल बैठा साहब कहन लगे पंडित जी काका गया नी कि महाराज चलिया तां सी बदशगनी हो गई कैसी बदशगनी कि जी खोता हीक पिया ऐण दे तुरन लगिया साहब कहन लगे खोते दी गल दी की परवाह करनी सी तुसीं इष्ट दी आराधना करनी सी प्रभु दी आराधना करनी सी कहन लगा जी ऐसी गल नहीं कीती तां सारी है अग्नि नूं साक्षी मंग के
ਸ੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ਾ ਨਮਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਵੇਦ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਤੋਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਦਸ਼ਗਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੀ ਜਿੰਨਾ ਖੋਤੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਨੀ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬਦਸ਼ਗਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਅੰਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਨਾ ਧਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਖੋਤੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੰਜ ਕਰੋ, ਸੰਗਲਾ ਦੀ ਪਜਾ ਸਤਵਚਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਰਚੀ ਸੀ ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਲੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਚੈ ਕਰਨੀ ਏ, ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਪੋਥੀ ਵੇਖੀਏ, ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਲੀ ਪੋਥੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਸਤ ਬਚਨ ਦੀ। ਕਦੋਂ ਜਾਵਾਂ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਹੁਣੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਜੀ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਚਾਰ ਨਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘਰ ਬਾਹਰ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸਾ, ਤੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈ ਸੰਗ, ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਾਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਅੰਨ ਜਨ ਲੈ ਜਾਓ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਅੰਨ ਪਾਣੀ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਅੰਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਅੰਨ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਨਾਲ ਚੁੱਕਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਧਨ ਲੈ ਲਵੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਧਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਖਾਮ ਖਾ ਦੇ ਖਤਰੇ ਮੁੱਲ ਲਵਾਂਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਮਾਲਕ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਧਨ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਪਈ ਮਾਇਆ ਚ ਇੱਕ ਟਕਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੇ ਝੋਲੀ ਚ ਪਵਾ ਇੱਕ ਟਕਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੰਕਾ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਉਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਟਕਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਝੋਲੀ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਪਵਾ ਲਿਆ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਜੀ ਤੁਰ ਪਏ, ਇਕੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਤੋਂ ਪੋਥੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਰਾਹ ਮੁਕਾਮ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਹਕੀਕਤ ਰਾਹ ਮੁਕਾਮ ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਏਡਾ ਸਫ਼ਰ ਬਿਨਾਂ ਸੰਗੀਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਧਨ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਅੰਨ ਦੇ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਸਰੇ। ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ

परम सत्कार गुसा सिंह जीओ एक जकारा सारे रल के बुलाइए बोले सोनियाल भी इकट्ठे और सत श्री अकाल भी इकट्ठे। भाई साहब जी ने बेनती करांगे कि सुर देन आओ सारे करो रसना पूछो।

सब तो पहला रागां विच श्री राग जो के इस समय ही गाया जाता है। बाणी विच इसनू रागां विच सिर मोर मन्या है। रागां विच श्री राग है। ते शब्द भी श्री राग दा पहला शब्द है। मोती ता मंदर ऊसरे रतनी ता होए जड़ाव कस्तूर कुंगू अगर चंदन लीप आवे चाव मत देख भूला विसरे तेरा चित ना आवे ना। शब्द श्री गुरु नानक देव पातशाह जी दा उच्चारण कीता होया। राहो दी तुक है हर बिन जियो जल बल जाओ मैं अपना गुर पूछ देख्या अवर ना ही था। मैं एक बेनती करूंगा बच्चिया नू जरा इना दी गल्ला दी आवाज जे इधर आएगी ता मन खिंडदा है। फिर सब तो पहला जपताल 10 मात्रा ते अंतरा 10 मात्रे दा ही सुलफाक विच सुलफाक चलंत लय विच गाया जांदा है। अंतराय दा चलंत लय विच है ते अस्थाई ठा विच है।